0: DJ 蛋卷。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 20437।
1: पहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: वा आरामदायी बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437
1: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।

0: DJ 战舰。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612-20437
1: अहिले रातिको 9 बज्यो

ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ మౌలికాలిక దివ్యే నమః. విద్యుద్ధామ సమప్రభా మృగవతి స్కంద స్థితామేషణం కన్యాభిః కరవాల ఖేత విలస దస్తాభిర సేవితాం హస్తై శకృగదాసి ఖేత విశికాం శాపం గుణం తర్జనీం బిభ్రాణమునలాతికాం శశిధరాం దుర్గావత్రనేత్రాం భజే. దేవీ భగవతి మౌలికాలికాకు చరణమా హార్దిక నమన్. తపైకు అంతర్దిల్మా విద్యమాన ఆత్మస్వరూపీ పరమాత్మలై నమస్కార్. మధ్య నేపాలకై ఉత్కృష్ట సామూదాయిక రేడియో విజయఎఫ్ఎం 101.6 కు ప్రభాతకాలీన ప్రస్తుతి కార్యక్రమ ఆరాధనమా తపైలాई హార్దిక స్వాగత గర్దछु. म కృష్ణమణి ప్రవిధి సమ్మేళన మిత్ర రాజేంద్ర ఏవం అరుణికా సాథమా ఆజకు యో సుఖద వర్షైమా తపై హామీ యతి యాత్ర గరిరహెకా ఛౌ. धार्मिक सेवा समिति मौलकालिक मंदिर को सहयात्रा एवं सहयोग में संचालित इस कार्यक्रम यहाँ प्रत्येक दिन यो शुभ बिहान को 5 बजे देखि सुंद आने कार्यक्रम को श्री गणेश करूं. आज को पंचांग संग संबद्ध जानकारी आज मिति 2083 साल आश्विन 25 गते आईतवार तदनुसार अक्टूबर 11 तारीख सन 2026 अहिले आश्विन शुक्ल पक्ष अर्थात दुर्गा पक्ष को प्रतिपदा तिथि. प्रतिपदा को घड़ीपला रहेको छ 36:34 जिसको अवधि होने रात्रि को 8:39 सम्म को. इसी चित्रा नक्षत्र रहेको छ 42:10 इसको अवधि भने रात्रि को 22 अर्थात 10:54 सम्म को होने. साथ ही वैद्युत योग रहेको छ 41:11 इसी किमस्तुक्नकरण तथा बवकरण रहेका छन्. आनन्दादि योग में पद्म योग रहेको छ. इसी कन्या राशि में चंद्रमा को अवस्थिति बिहानको 10:28 सम्मको रहेको छ. त्यसपछि भने तुला राशिमा चन्द्रमाको प्रवेश हुनेछ. दिनमान 28:59 रहेको छ. सूर्योदय बिहान 6:02 हुँदैछ भने सूर्यास्त साँझ 5:37 हुनेछ. आज नवरात्रारम्भ घटस्थापना जमरा राख्ने दिन. चित्रा तथा वैधृति योग रहेको हुनाले चित्रा नक्षत्र अनि वैधृति योगको शान्ति गरेर मात्रै घटस्थापना गर्नु उत्तम हुनेछ. यसै गरी मातामह श्राद्धम गरिने दिन पनि आज नै रहेको छ. यस पावन क्षणमा सर्वप्रथम आउँदै गरेको विजयादशमी बडा दशैंको प्रारम्भको यो शुभ दिनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रा तमाम श्रोता हितैषी शुभेच्छुक सम्पूर्णमा भगवती देवी मौलकालिकाको आशीर्वाद प्राप्ति होस् भन्दै यो शुभ बिहानीमा हामी उनै देवी भगवतीको वन्दना गरिरहेका छौँ. ओम जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा श्रोधा नमस्ते. भगवती देवी मौलकालिकालाई सम्पूर्ण देवी नवदुर्गा भगवतीको शक्तिका रूपमा सम्मान गर्दै आउनुहोस् आजको यो गसाईमा शारदीय नवरात्रमा विशेष गरी भगवती देवीका यस पावन मन्दिरमा विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने गर्दछन्. आजकै यो प्रारम्भ दिनमा घट स्थापना गरेर भगवती देवीका मन्दिरमा जमरा राख्ने तथा सम्पूर्ण प्राणी मात्र मानव मात्र समग्र नेपालीहरू स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्दै धार्मिक सेवा समितिले जगत मङ्गलको कामना गर्दै भगवत सर्वमङ्गलम भन्ने उच्च उदात्त भावनाका साथ भगवती देवीको अनुष्ठान सम्पन्न गर्दै आएको यहाँलाई अवगत नै छ. विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु भन्ने उच्च आदर्शका साथ भगवती देवीका चरणमा विशेष अनुष्ठान गर्ने दुर्गा सप्तशती पाठ पारायण आदि कर्महरू हुने देवीका पूजन अनुष्ठानका कर्महरू सम्पन्न हुने गर्दछन्. लोक मङ्गलकारी भगवती देवीको उपासनामा धार्मिक सेवा समिति निरन्तर लागि परेको र यहाँ काम गर्नुहुने समग्र श्रद्धालुहरू भगवती देवीका परम उपासक बनेर भगवतीको आराधना गर्दै सबैको कल्याणमा जुट्नु भएको छ. आउनुहोस् भक्त साधक, यो ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिबाट अति महत्त्व राख्ने पवित्र भूमिमा यो शारदीय नवरात्रभरि भगवती देवीको पूजन उपासना गरी कृतकृत्य बनौँ, लाभान्वित बन्न सकौँ. तपाईँले जहाँ पुग्नका लागि सहज यात्रा अवलम्बन गर्न सक्नुहुनेछ. मौलकालिका

दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ान, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।